0: Says Nanak, meditate and vibrate upon God, and you shall be taken across the terrible world ocean.
1: Sikhi di e nishani Shabad Guru Ram Das ji Vyakhya Jagdeep Singh Chitrakar Pardeep Singh
2: Simar Singh Kirpa Kaur Utho Utho Ki Tuhanu Vadhiya Neend Aayi
3: Akhirli Cheez Jehdi Mainu Yaad Hai Mammi Ji Ne करो बेनती गाना शुरू ही किता सी ते मेनू नींद आ गई
4: अजीत वीर जी मेनू बड़ा चंगा लगता है जदों तुसी मेनू जगांदे हो
2: आओ वेखिए पहला कौन स्नान करके पाठ करन ली तैयार हुंदा है
3: मैं जित जावांगा
4: मम्मी जी कि मैं बबल पात ले सकती हूँ?
2: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुम्हें प्रसाद सवाइये करेंगे।
3: मैंने बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए, ताकि मैं नाश्ता कर सका।
4: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
2: आओ अनंत साहिब करिए
3: मैं उच्ची उच्ची गावांगा
4: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया
2: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है
3: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकता हाँ
4: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे को तुहाडे वर्गे वीर हन
2: ओ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए
3: मैनू उना दिया वडिया कृपाना बहुत चंगिया लग दिया हन
4: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी
2: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहे गुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है
3: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए
4: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होरी वीडियो सब्सक्राइब करो।

0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकती।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह किहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਲੁਕਿਓ ਨਾ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ।
3: ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ੀ ਦਰਾਂਗੀ।
5: ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਦਾ।
3: ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ?
5: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ।
1: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

0: That was a really nice story. For more, go to seeknut.com/story.
1: सिखी दी ए निशानी शब्द गुरु रामदास जी व्याख्या जगदीप सिंह चित्रकार प्रदीप सिंह
2: सिमर सिंह कृपा कौर उठो उठो की थानू वधिया नींद आई
3: अखीरली चीज जेड़ी मनु याद है मम्मी जी ने करो बेनती गोना शुरू ही किता सी ते मेनू नींद आ गई
4: अजीत वीर जी मेनू बड़ा चंगा लगता है जदो तुसी मेनू जगांदे हो
2: आओ वेखिए पहला कौन स्नान करके पाठ करन ली तैयार हुंदा है
3: मैं जित जावांगा
4: मम्मी जी कि मैं बबल पाथ ले सकती हूँ
2: आओ पहला सिमरन करिए फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो मैं जाप साहिब करांगा सिमर सिंह तुम्हें प्रसाद सवाइये करेंगे
3: मैनू बहुत भूख लगी है आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका
4: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ
2: आओ अनंत साहिब करिए
3: मैं उच्ची उच्ची गावांगा
4: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया
2: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है
3: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकता हाँ
4: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे को तुहाडे वर्गे वीरन
2: ओ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए
3: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन
4: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी
2: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहे गुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है
3: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए
4: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है